0: बलू एफ एम 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: स्टूडियो टाइम
2: टाइम
3: चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुर्कुंड नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू।

0: मधुबन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: Soundcheck. Surya FM. Studio time.
2: It's 8 a.m. Dikhatko 8 baje.
0: Time check ko saath ma. New Star Digital Color Lab tatha Jwalamai Offset Press. Solu Dutkunda Nagarpalika 5 Solu Khumbu.

0: 才华之人所怒 FM 同等
1: सोनु FM 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
2: Sanche Sonu FM Studio Time
3: It's 9 AM
1: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोनू दुदकुंड नगर पालिका 5 सोनू कुंभू

13 अनिशा फौजदार खनाल अमित राय नरेन्द्र बहादुर विके हिमाल अर्याल राजकुमार लामिछाने अर्जुन कुमार न्यूपाने सपना न्यूपाने खरेल संजय श्रेष्ठ मनोज सिंह किरण सुनवार प्रवीर कणेल एकता शर्मा श्रेष्ठ र सहारा गुरू।

0: नागरिक सहायता कक्ष संचालन होने संबंधी सूचना अदालत व गृह महानुभाव यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रभावी सेवा प्राप्ति को सहजीकरण को नागरिक सहायता कक्ष संचालन कर उक्त कक्ष निःशुल्क सेवा प्राप्त कर सकने सेवा प्राप्ति को नागरिक सहायता कक्ष में संपर्क राख् अनुरोध कर सेवा प्राप्ति में कोटी को प्रलोभन नगरी आपको सेवा लिना हार्दिक अपील करद सेवा प्राप्ति में कई गुनासो आए में गुनासो सुनी अधिकार कार्यालय प्रमुख सोझी संपर्क राख्स
1: कोशी प्रदेश सरकार आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय

0: check. Studio FM, the studio time.
1: It's 2 PM. New support the budget.
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई ऑफसेट प्रेस सोलू दुर्गुंडा नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू।

to your heart. Zulu FM 101.2 MHz. कार्यक्रम आफ्नै पाका आफ्नै भाका को साथ में सागर इलेक्ट्रोनिक्स सेंटर तथा मोटरसाइकिल वर्कशॉप

कानून कैंपस एलएल बीमा भर्ना संबंधी एक सोलखुम्बु कानून कैंपस में शैक्षिक सत्र 2083 84 को लगी 3 वर्ष ग्यालरी प्रथम वर्ष को भर्ना खुले हुआ कुछ विषय में स्नातक तह उत्तीर्ण कर इच्छुक व्यक्ति निम्नअनुसार भर्ना होना जानकारी कराई भर्ना कार्यक्रम को मिति भर्ना के लिए आवेदन फारम वितरण भदौ 1 गति देखि भदौ 30 गति सम्म प्रवेश परीक्षा असोज 10 गते नोटिसा प्रकाशन असोज 11 गते भर्ना मैथ असोज 12 गति देखि असोज 25 गते सम्म कक्षा संचालन कार्तिक 10 गते देखि रजिस्ट्रेशन फारम भर्ने मैथ कार्तिक 30 गते सम्म सब जानकारी का 98150105 98148445 98242 84 87 75 गीता घिमिरे कैंपस प्रमुख सोलखुम्बु कानून कैंपस।

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: Soundcheck. Sony FM. Studio time.
2: It's 4 PM. अपराह्न को 4 बजे.
0: Time check को साथ में New Star Digital Color Lab तथा ज्वालामय Offset Press. सोलु दुधकुंड नगरपालिका 5 सोलु कुम्बू.

लागू कानून के अंतर्गत एनएल बीमा भरना संबंधी इस सुनुकुम्भ कानून कैंपस में शैक्षिक सत्र 2083 संगासी को लगी 3 वर्ष एलएलबी प्रथम वर्ष को भर्ना खुले हुआ कुछ विषय में स्नातक तह उत्तीर्ण कर इच्छुक व्यक्ति निम्नअनुसार भर्ना हुई जानकारी कराई भर्ना कार्यक्रम को मिति भर्ना के लिए आवेदन फारम वितरण भदौ 1 गते देखि भदौ 30 गते समय प्रवेश परीक्षा असोज 10 गते नोटिसा प्रकाशन असोज 11 गते भर्ना मैथ असोज 12 गते देखि असोज 25 गते समय कक्षा संचालन कार्तिक 10 गते देखि रजिस्ट्रेशन फारम भरने मैथ कार्तिक 30 गते समय सब जानकारी का 98150056 98148445 98242487 75 गीता घिमिरे कैंपस प्रमुख।

0: सोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: Studio time.
2: It's 5 p.m.
0: 5:05 New Star Digital Color Lab तथा द्वारामाई Offset Press. सोलु दुधकुम नगरपालिका 5 सोलु खुम्बु.

0: तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुने एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुने एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
3: Soundcheck. Sunya Sun. Studio time.
0: It's 7 p.m.
4: को साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर ल्याब तथा ज्वालामय अफसेट प्रेस सोलु दुर्कुन्द नगरपालिका पाँच सोलु खुम्बु

0: Show. Sony FM, Studio Time.
1: It's 8 p.m. रात को 8 बजे.
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारा माई ऑफसेट प्रेस सोलू दुदकुम नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू.

मान्यता सबसे विशेषज्ञ आजकल आत्मीयता यूनिट कार्पेट को विगत तीन दशक देखि को सुंदर साथ यति कार्पेट के कार्पेट को पछाड़ी यति को लोगो हिन्न नबिर्स यति कार्पेट कार्पेट को शीर्षा